0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देती उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे
2: मैं आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा मैं आ जा तो मैं नाल नचिए
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: वाले हो, उन महंगे परफ्यूम आते $400-500 लॉन्डी बिल्कुल लोड नहीं। रॉयल परफ्यूम्स दी हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। स्विट्जरलैंड तो इंपोर्ट कीते ऑयल्स नाल तैयार डियोर ते शनैल वर्गी सेम फ्रेग्रेंस जो चले 8 घंटिया तो भी वध। हर परफ्यूम सिर्फ $50 विच अते रेडियो उड़ान दे श्रोतिया लई खास धमाका, बाय टू गेट वन फ्री यानी $100 चे 3 परफ्यूम ते नाल एक तोहफा रेडियो उड़ान प्रभ संधु दा रेफरेंस देन ते। अपने आप नु फुल्लां दी तरह महकाओ, आज ही आओ यूनिट 9-1 रीगन रोड ब्रैम्पटन सिख संगत गुरु घर दे नेड़े, जा ऑर्डर करो www.royalperfumes.co ते, कॉल करो 4373150701।
1: ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਸਿਆਹ ਸੁਣ ਫਿਰ।

0: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
1: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
0: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
1: 6478355294 647-835-5294
2: नाले चोपड़िया नाले दो दो
3: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना यानी दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाय पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
2: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो
3: एक बार आओगे बार बार आओगे
2: अनबीटेबल प्राइसेस सेल ऑल टाइम दाना मंडी 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
1: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे. Mortgage the King, Girish Sharma.
6: Residential, commercial, refinancing, debt consolidation, second, third mortgages, private funds.
5: सब ले याद रखो Girish Sharma. Pre-approval ही नहीं, closing तक देंगे पूरा साथ. Dealing with all banks.
6: Call 647-606-8110.
5: Or visit sharmamortgages.com.
1: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ली आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 416-930-1251
7: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ
8: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ
1: ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
8: 416-717-2929
1: 416-717-2929 ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ

0: आवाज हर रोज सवेरे 9 तो 10 बजे तक पंजाब की मिट्टी की खुशबू बिखेर दी आवाज डील्स ऑफर्स गीत संगीत पेश कर दी आवाज तुहाडी निखर दी सवेर नो सजरी सवेर बनाउंदी आवाज ये है रेडियो आवाज हर रोज सवेरे 9 तो 10 बजे तक रेडियो आवाज
1: Advertisements are paid. Awaz the Voice does not take any responsibility for any paid advertisements during this program.

आज खूबसूरत मेरा खूबसूरत लोग खूबसूरत बंकन सी चलो डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरभउ निरवैर के नाल नाल असीं हमेशा कहने हुंदे कि रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसीं चलदे रहोगे यानी कि नवीं चीज़ा जिंदगी चाहुंदियां रहणगियां उन्हां नूं एक्सैप्ट करते रहोगे दुख और सुख दोनों दे विच जन अवस्था ही हो जाऊगी कि आनंद पाया मेरी माए सतगुर मैं पाया तकलीफां दुख बहुत कुछ जो आस पास है वो खत्म हो जाता। खत्म किदा होंदा आनंद की अवस्था ही ऐसी है कि आनंद तो चरखड़ियां ते भी आया शहादतां ते भी आया जन्म मरम के दुखां चो कटे जाण दे विचों भी आया ते आनंद की अवस्था च बाबा दीप सिंह भी रहे आनंद की अवस्था च मरजीवड़े शहीद सिंह जिन्हें धर्महित सीजत बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना तन चरवाए बंद बंद कटवाए मावां ने बच्चों नूं खुशी खुशी आनंद की अवस्था च झूलियां च पाया। तो हमेशा मैं सब तो वड्डी गल कहना हुंना देख के अणजठ कीता देख लेना किसी चीज़ नूं फिर उन्होंने अणजठ कर देना भी मैं तो देखिया ही नहीं है मेरा बच्चा मेरे सामने मार दिता औरंगजेब के सिपाहियों ने तो हुण उहदे टुकड़े टुकड़े करके मेरी झोली उड़ा के मेरी झोली च पा रहे ने ता जो मैं अंतम संस्कार कर सकां। ये माहौल रहे ने यह इतिहास नहीं है कि 4000 साल पहला फलाना आया सी उन्हें फलाने नूं ऐ मारता सी गल दा पतंगड़ नहीं है इतिहास है कि थोड़ी चौथी या पंजवीं पीढ़ी उन्हां दे विचों हो सकती है जिहड़े शहादतां पा गए। सो अज इस शो दे विच इक वार फिर तो चढ़दी कला मतलब चढ़दी कला कोई डर नहीं कोई भाव नहीं है चढ़दी कला नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत्त पला।

0: नानक कामण सदा सुहागण। हे नानक, ओह रूप प्रभु परमेश्वर ना मिल जाते हैं, जन्म मरण के दुखों के बीचों कटी जाती है। मैंने मेरे प्रीतम जियो तुद बिन खरी नमाणी। हे परमेश्वर, तेरे तो बिना मेरी नमाणी रूह है जड़ी वो बिलक रही है, वो तरस रही है, वो तेरे मोह च तेरे प्यार च नहीं, वो तेनों आनंद की अवस्था के याद कर रही हैगी है। एडवांस सुन रहे हो और एक बार फिर तो चढ़ती कला के एक नवे दिन की शुरुआत हो चुकी है। माड़े मोटे तो चलते ही रहते होंगे ने, कोई चक्कर ही नहीं गा। नॉर्मल जी लाइफ जीए तो फिर की जीए, माड़ा मोटा तो चलता भी रहना चाहिए होंगे। तो एक बार फिर तो चलिए सफर के वाल जो बहुत खूबसूरत पर थोड़े साथ 905-673-7333 संधि, जिते चलेंगा चलूंगी नाल तेरे टिकटा दो ले ली। हो सकता बहुत सारे लोगों ने मेरी आवाज़ पॉजिटिविटी दी हो, सकता बहुत सारे लोगों ने आवाज़ पसंद भी ना हो, सकता ना पसंद होने के बावजूद भी सुन रहे होवो, इन्हों कृपा कहें। तो मैं गलियां का रोड़ा कूड़ा मेरे साहिब दियाँ वड़ियाइया, कुछ नहीं पल्ले, कुकर्मा नाल पापा नाल तबाहियां नाल भरी हुई है जिंदगी है। मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा, कूड़ा ही हाँ सड़कों का सी, गलियां दा कूड़ा मेरे साहिब दियाँ वड़ियाइया। उस सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा जो होंगी है, तनके जिनी कदर ना मेरी, कोई नहीं जानता, कोई बात ना पूछे मेरा जी, है ना। सो है ही नहीं कुछ साढ़े पल्ले, अज मैनू कुछ भी नहीं पता की हो रहा मेरे कंट्रोल से, मैं लगता है कि मैं करता पाया, मैनू नहीं पता अगले क्षण की होना है। हाँ जी, तिनके जिनी कदर ना मेरी, मैंने तख्त बिठाया साइया। इन्ने लोग इज्जत नवाज रहे ने फिर भी इनिया कमिया के बावजूद, तो तख्त बिठाया होंगे कि तुसी अपने लिए जिहड़ा दूसरियां च इज्जत देखते हो कि तुहाडी रिस्पैक्ट करते हैं, उन्होंने कहते तख्त बिठाया साइया। जे वेखा मैं अमलों वल तो अपने कमां वल देखा तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल तो बल्ले ही बल्ले बल्ले, भी तेरी कृपा ही है, बल्ले बल्ले है तेरी परमात्मा, शुक्र है तेरा कि परदे ढके हुए हैं। सो एक बार फिर तो चलिए शो दे विच जिथे तुसी साडे नाल शामिल होने जा रहे, 905-673-7333 स्टूडियो नंबर, और तुहाडे नाल सब तो पहला रखड़ी है अज, भैणां ते भरावां दे प्यार दा प्रतीक, एक त्यौहार एक शगन दे तौर दे उत्ते है। ये प्यार दिलां च हुंदे ने, मनां दे विच खोट ने ते हत्थां ते धागे ने, गल्लां नहीं बनदियां। गल्लां ते ये ने कि रोज़ ही रखड़ी होवे ते रोज़ ही फादर्स डे होवे, रोज़ ही मदर्स डे होवे, भावें तुसीं लख एक दूसरे नाल नाराज हो किसी गल तों, ते जिहड़ा प्यार है तुहाडा, थोड़ी सद्भावना एक दूसरे लिए उदा ही बनी रहे। कुछ खबर ने जिन्हां दे उपर मैं जिक्र करूँगा, टैरिफ के उपर कुछ नवे अपडेट, जिथे अमेरिका किस करबट बैठ रहा है। कल श्री डोनल्ड ट्रंप साहब ने नक्शा चक्या ते लिखता हुण कल तो जी ये लेक ओंटारियो जिहड़ी है वह अमेरिका दा खनकीड़ी लेक लुक बन जाऊगा, ना वो हो जूगा। मामा हीर दिया 2600 साल पुरानी लेक का नाँ चलता आ रहा, ओंटेरियो का नाम बाद चु पिया, लेक का नाम पहला पिया हो, अमेरिका बनन तो पहला दी लेक है। कल कैनेडा फैनेडा ना लिखती, अमेरिका ना लिखती कागज उत्ते। मैनू ये डर लगता कल किसे होर कंट्री ना लिखते, रूस भी हुण अमेरिका ही आला ऑर्डर पास करता। कार नहीं कहता, ये ऑर्डर उन्हें अपने लिए पास किया है खुद लई। वी डोंट गिव डैम, प्राइम मिनिस्टर कार नहीं कहता, ये जो मर्जी लिखे चले कागज के टुकड़े तो सानू की फर्क है, लैट हिम राइट डाउन। एक बच्चा कागज से कुछ लिख रहा तो उन्होंने ऑर्डर करके पास कर रहा, तो वो अपने आप ही कर रहा, असी नहीं मानते इन। फिलहाल बहुत सारी गल्लां बातें होर, पर इस समय जो टफ टाइम है मुल्क के लिए, मुल्क दिया कोई भी चीज़ा थोड़ा ना पसंद ने ना, उन्होंने इग्नोर करके पसंद तौर देते तुसी लेके चलो। मोहन भागवत के वीजे की गल चल रही है, उसते डिस्कशन जी प्राइम टाइम के मेन स्ट्रीम से चल रही थी, उद्दर भी गल करूँगा थोड़ी जी गल होर। पर पहला फ्रैश क्रॉसी डिपो कहता कि आ जाओ अज, क्यों भाई जी आने?
1: हाँ जी अमन भाजी, सत श्रीकाल और सारे
0: भाई
1: सत श्रीकाल जी। सो बिल्कुल जी, रखड़ी दिया सारे नु बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक फ्रैश ग्रोसरी डिपो वालों। जे तुसी हजे भी रखड़ियां बायआउट करने वास्ते सोचते पे हो, तो दो लोकेशन है जी सर्व करने वास्ते ब्रैम्पटन दे विच, और बहुत ही वधिया वधिया डिजाइन आए है जेडे कि 99 सेंट तो लैके शुरू हो जाते हैं जी, और बहुत ज्यादा रेंज दे विच नहीं है, प्राइस बड़े रीजनेबल आए ने, पर डिजाइन देख के थोनू वधिया लगूगा, गुट ते रखड़ी बन्नी वीरे दे भी बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 31 ਸਟੀਪਲ ਬੁਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸਨ ਔਰ ਡੰਡਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਆ 1618 ਡੰਡਾਸ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਵਿਟਬੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੱਖੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਨਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋ ਸਿਟੀ ਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਤੱਕ।
0: ਸੋ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ, ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 905-458-1300, ਔਰ $150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $200 ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਟ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਟਮਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹੁੰਚੋ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ

0: 9090।
1: सत श्री अकाल जी, सबको मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बहुत बधाई हो जी।
0: जी जी बहुत बहुत
1: और
0: बधाई।
1: सेलिब्रेशन जो करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, एंजॉय करिए। मथुरा के पेड़े बड़े मशहूर है। जब
0: हाँ
1: हम जाया करते थे दिल्ली, फिर अमृतसर जाता था मैं नमक मंडी मेरे दोस्तों से मिलने, तो रास्ते में जो है जब मथुरा पड़ता था कानपुर से, भोपाल से जाते में दिल्ली से पहले मथुरा आता, आगरा वगैरह, तो वो मथुरा के पेड़े बड़े मशहूर थे। वो बड़े
0: अच्छा जी
1: खास किस्म की घी में बनाते हैं हर जगह ने, हर इलाके की बहन जी एक डिश होती, एक स्वीट होती, बड़ी मशहूर होती वो खुद ब खुद है वो, समझे। तो
0: जी
1: ये एक चीज थी। दूसरा, आपने कहा फ्राइडे का दिन है, हल्का फुल्का रखते हैं, नो सियासत, नो पॉलिटिक्स, नो पड्डे शड्डे, तो
0: जी
1: फिर बेहतर एक गाने की बात है तो फिर ये गाना लगा दीजिए, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा श्याम, लोग कहें रे मीरा को यूं ही बदनाम। तो
0: आपने अभी लगाया
1: लोग,
0: रेडियो?
1: जी मैं भी लगाया,
0: अच्छा, मैंने यही गाना शुरू किया, पहले लगाया मैंने, थोड़ा सा
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: लगा
1: करे,
0: देती
1: सॉरी
0: हूँ।
1: मैं नहीं सुन सका। नहीं, मैं मत लगाइए, कोई दूसरा लगा दीजिए,
0: नहीं,
1: मगर
0: अभी तो
1: पॉइंट
0: मैंने
1: मेरा एक
0: थोड़ा
1: है,
0: सा ही
1: मैंने
0: लगाया
1: नहीं
0: था।
1: सुना।
0: लगा देंगे, आप कह रहे हैं तो
1: अच्छा
0: जरूर
1: अच्छा अच्छा
0: लगाएंगे।
1: शुक्रिया बहुत बहुत। और एक शेर भी है बड़ा जबरदस्त, श्री कृष्ण भगवान पे, और
0: जी
1: ये शेर दरअसल पाकिस्तान की एक शायरा है, इंतकाल हो गया उनका एक्सीडेंट में, उनका नाम था परवीन शाकिर।
0: अच्छा जी
1: मैं जो है बहन जी मुकम्मल मालूमात देता हूँ, आधी बात कभी नहीं करता, क्योंकि दुनिया में आधे रहते, फिर आधे मत रहिए, कंप्लीट रहिए या मत रहिए, ऐसी बात है। डिश पूरी होंगी, ऐसा
0: जी
1: नहीं होता आधी रोटी पकी, आधी रोटी खाए पेट में दर्द होता, रोटी तुसी पूरी पकनी चाहिए दोनों तरफ। बहरहाल, तो शेर ये है परवीन शाकिर का, जो कृष्ण भगवान पे बोली हो, जरा सोचिए आप कैसे होते शायर लोग, बड़े से बड़ा पाकिस्तानी नहीं बोल सकता ये बात, ये बड़ी तहकीक करता हूं मैं। और वो शेर ये है, गौर से सुन लीजिए। कैद में जो गुजर गई जिंदगी बड़े काम की थी, कैद में जो गुजर गई जिंदगी बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती जंजीर तेरे नाम की थी, और क्यों आकर हवा उड़ा देती है मेरा आंचल, यूं सताने की आदत तो मेरे घनश्याम की थी। क्या चंगा शेर है, क्या चंगा शेर है, गहराई में नहीं जाते। मैं
0: जी
1: देखा लोग पढ़ते नहीं, और मुझे बेचैनी होती, जब तक 2 घंटे नहीं पढ़ा नींद नहीं आती, मुझे एक अजीब बीमारी है मुझे पढ़ने की।
0: वेरी गुड,
1: मैं बोलता हूँ
0: आई
1: लाओ क्या चीज है, मटेरियल लाओ, मवाद लाओ, कोई भी जबान की हो जो जानता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज का हो सीखना चाहता हूँ। पंजाबी को, मैं इतने बड़े पंजाबी दोस्त है, मैं बोलता हूँ यार पंजाबी बीच गल करो सी, वो मेरे को पलटा के इंग्लिश में जवाब देते। मैं बोला भाई मैं पंजाबी में जवाब दे यार, ताकि मेरी जब पंजाबी अच्छी हो। तो बोला क्या करते सीख के। अरे भाई तुम क्या कर रहे हैं सीख के, वो ही मैं भी करूंगा। जरा सोचिए बजाय ये बोलने के, हाँ भाई ये बंदा सीखना चाह रहा, उसको शौक है, सिखाने में क्या हर्ज है। मैं
0: जी बिल्कुल सर, थैंक यू।
1: ईरानियों से बात करा तो लोग बोलते आप इंडियन है, मैं बोला पाकिस्तानी है, मैं बोला आप गेस करो, नहीं भी फारसी इतनी अच्छी का सब बोलते, मैं बोला सीखा हूँ बाबा, सीखा हूँ मैं,
0: वेरी गुड
1: सीखने से सब आता। बोला कोई आसमान से नहीं आते, जमीन
0: जी,
1: पे सब सीखते, मैं भी सीखा, शौक है मुझे। तो
0: ठीक
1: ये
0: है,
1: बात है। थैंक यू सो मच बहन जी फॉर गिविंग द टाइम, एंड वंस अगेन सबको मेरी तरफ से फिर एक दफा बताइयो।
0: जी, थैंक यू सर।

0: डे वन केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मठियाईया समोसे दे पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नू फोन करो।
1: डे वन के तुम गालिए
2: दोस्तों सत श्रीकाल नमस्कार
3: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द

0: पिछले 9 जनरेशन से, आज कल्चर ने मेरा पापा, मेरा दादा, मेरा प्रदादा सारा यही काम कर रहा है, आयुर्वेदिक वैद्या है।
1: ठीक है,
0: अभी अभी अभी हमको फैमिली डॉक्टर कैसा होता है वैसा राजा महाराजा को भी फैमिली वैद्य होता है, वैसा मेरा मेरा लोग, मेरा पापा लोग वैसा वैद्य है। ये सारा मैं वैद्य करता है, हमारा 5000 इयर्स का आयुर्वेदिक का अभी तक सेम लेकर आ रहा है मेरे जनरेशन से।
1: जी जी,
0: सारा इलाज मेरे साथ क्या हुआ, कैसा होता है, हिमालय जाके उधर से जड़ी बूटिया, पेड़ों से ऊपर, पर्वतों के ऊपर से जड़ी बूटिया, रेड रेड जड़ी बूटिया लेकर आके उसको प्रोसेस करके उससे हम दवा देता है लोगों को।
1: ठीक है,
0: नाड़ी नाड़ी परिशोधन करता, नाड़ी का मतलब हमारा नबस बोलता है, नबस देखता है।
1: अच्छा,
0: नबस देख के नबस में वाता पित्त कफ दोष रहता है।
1: आपका मतलब गुरुजी ये है कि आप नबस देख के बता देते हैं बंदे को प्रॉब्लम क्या है?
0: यस भैया, नमस्ते, प्रॉब्लम क्या है वो बता करता है, क्योंकि भैया हमारा बॉडी में 3 दोष होता है, हमारा ऊपर का कफा होता है, मिडिल में पित्ता होता है, नीचे का वाता होता है। ये भी वाता पित्ता कफा दोष होता है, इसका मेन कारण क्या होता है, हमारा पेट को अंदर एसिडिटी गैस बन जाके, ये गैस से डाइजेशन नहीं होता है, फैटी लिवर हो जाता है, शुगर पैंक्रियास हो जाता है, इसके लिए होता है गैस के लिए, एसिड के लिए, एंड मेन आर्थराइटिस के लिए। ये कंट्री में, हमारा कनाडा में बहुत लोगों को आर्थराइटिस से सफर कर रहा है, लोअर बैक पेन से सफर कर रहा है, सायटिका के लिए सफर कर रहा है, नमनेस होता है पैरों में, एंड सर्विकल नर्व्स को वो गर्दन में दर्द होता है, नेक में दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कई वो दोनों हाथ ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, बैठने के उठने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, लिगमेंटिन कम होता है जॉइंट में, कॉटलेज लिगमेंटिन कम होकर, और आर्थराइटिस, रोमाटिक आर्थराइटिस, ऑस्ट्रो आर्थराइटिस, गाउट हो जाता है, सारा को सारा हमारा पास हिमालयन हर्बल से दवा है। उसको बहुत लोग, आपको हमारा शो सुन के बहुत लोग आ गया, बहुत लोग ठीक हो गया था।
1: अच्छा, एक बात और गुरुजी, जो शुगर का बहुत इशू चल रहा है उसका क्या इलाज है आपके? कई लोग शुगर के इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत गोली खाते हैं शुगर की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
0: सुपर सुपर भैया, आप अच्छा क्वेश्चन किया था। शुगर के लिए भैया हमारा पैंक्रियास बिल्कुल खत्म होता है, पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो जाए इसलिए शुगर बढ़ जाता है। मेरा दवा क्या होता है, शुगर अभी मेटफॉर्मिन, जेनेमेटो और इंसुलिन बहुत लोग डाल रहा है, मेरा दवा दे तो उसको बिल्कुल 1 वीक 10 दिन में ये सारा बंद करके हमारा दवा से 5-6 को अंदर बहुत लोगों को रीडिंग हो गया था, और 3 महीना को 5.5-6 को HbA1 हो गया था। सो मेरे पास वो शुगर के लिए बहुत अच्छा इलाज है। शुगर के लिए भैया, शुगर के लिए 2-3 प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है, मैं भी नोटिस किया था। एक यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा है, शुगर लोगों को यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिन नहीं रुकता है, नहीं कंट्रोल नहीं करता, यूरिन जाने के टाइम के पहले लीक जाता है।
1: अच्छा,
0: यस, ये बहुत प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट भी होता है, प्रोस्टेट नहीं तो भी शुगर लोगों को यूरिन जाने के पहले बहुत लोग आ गया था।
1: जी जी,
0: उसको सारा को सारा ठीक किया था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, नर्व्स में वीकनेस हो जाता है, बॉडी में ताकत कम हो जाता है, शुगर लोगों को देखो भैया बहुत टायर्डनेस हो जाता है, थोड़ा वो टाइम होने के टाइम में थक जाता है, काम करने के लिए दिल नहीं होता है, वैसा लोग भी मेरे पास बहुत लोग आ गए, बहुत लोगों को ठीक किया था।
1: ठीक है,
0: एक दो प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा इलाज मेरे पास है, इचिंग के लिए, सोरियासिस के लिए, बच्चा को लोगों को बहुत इच्छी होता है उसको लिए, एग्जिमा के लिए, 1 वीक को अंदर हमको रिजल्ट दिखेगा।
1: ठीक है,
0: बहुत लोग हमारे पास।
1: अच्छा, शुगर का इलाज हो गया, कई बार किसी को कोई कोलेस्ट्रॉल हाई किसी का होता है, उसका भी कोई आपके पास इलाज है कोलेस्ट्रॉल का?
0: यस भैया, कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारा ब्लड को पतला नहीं करता है, थिकनेस करता है।
1: अच्छा,
0: इसलिए ब्लड सर्कुलेशन कम करके हमारा उसके उससे हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाता है। नर्व कोलेस्ट्रॉल ओनली हाथ के ऊपर नहीं भैया, बॉडी को सारा ब्लड में हो जाता है, किधर भी किधर ब्लड ब्लॉकेज हुए तो प्रॉब्लम हो जाता है, उसको लिवर में इफेक्ट।
1: नहीं नहीं, आप हमें प्लीज ऐसे नहीं, आप डराओ, प्रॉब्लम नहीं, हमें आपको पास आ जाना। आप कौन से नंबर पे हम आपको कॉल कर सकते हैं?
0: यस भैया, मेरे को एक ही नंबर भैया, 437-438-3399
1: नंबर,
0: 437

0: 4 3 8 3 3 9 9, यही मेरा नंबर है।
1: एक बात और गुरुजी, जाने से पहले अभी आपने शुगर का भी इलाज बता दिया, कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी बता दिया, गाउट का भी इलाज आपने बता दिया, एक किसी को बवासीर हो तो उसका क्या इलाज है?
0: बवासीर को कम से कम मैं इधर 300-400 लोगों को ठीक किया था।
1: 400 लोगों को ठीक कर दिया आपने?
0: यस, इधर इधर केरला में
1: तो
0: ब्रामटन
1: आप इधर ब्रैम्पटन में होते हो?
0: यस भैया, मैं मेरे को दो लोकेशन है, वीकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कारबरो में रहता है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ब्रामटन में रहता है। बवासीर होता है भैया, हमारा कोलन को अंदर 9 तरफ बवासीर होता है। एक कॉन्स्टिपेशन होता है, एक हमारा वॉशरूम जाने के टाइम में जलन आता है, दर्द आता है, समटाइम ब्लड आ जाता है, समटाइम फिशर बाहर आ जाता है, समटाइम वो बैठने के टाइम में बहुत बहुत दर्द होता है, समटाइम बाहर आ जाता है, अंदर नहीं जाता है, वैसा 9 तरफ होता है बवासीर। ये 9 बवासीर को भी मैं ठीक किया था, 300-400 लोगों को ठीक किया था पिछले 6 महीने से, विदाउट ऑपरेशन। दर्द नहीं होता है, वो पेन नहीं है, ब्लड ब्लड हो जाता है, बहुत लोगों को ठीक किया था भगवान।
1: आप कोई टीका टूका तो नहीं लगाते बंदे को?
0: टीका कुछ नहीं लगाता है। सारा दवा से ठीक हो जाता है, क्रीम देता है और वो जड़ी बूटी ऐसे देता है, जड़ी बूटी दे तो बिल्कुल ठीक हो रहा है।
1: ये जड़ियां बूटी आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं?
0: यस, मैं हिमालय पर्वतों के ऊपर एंड केरला आसाम कुल्लू मनाली वैसा वैसा मेन मेन जगह को फॉरेस्ट को अंदर मेरा टीम को साथ जाके उधर से जड़ी बूटियां लेकर आके उसको प्रोसेस करके वो उससे देता है। मेरा दवा मेरा हेरबल्स में ओनली हेरबल्स रहता है, कुछ भी और नहीं रहता है।
1: बहुत अच्छी बात है। एक बार नंबर आपका, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत बिजी होते हो, नंबर एक बार गुरुजी दोबारा दे दे प्लीज।
0: यस भैया, और दूसरा बात भैया, मेरे को कंसल्टेशन फीस नहीं भैया, फ्री कंसल्टेशन।
1: अच्छा,
0: हम हमारा लोगों को लिए देखने के लिए बात करने के लिए फीस नहीं लेता है, कोई भी हमारे पास आए तो वो पहले कंसल्ट करता है, आपको सेटिस्फेक्शन हुई तो दवा लेना, नहीं तो नो प्रॉब्लम, उसको मैं नहीं करता है। मेरा फोन नंबर एक ही नंबर है, 4374383399। आर्थराइटिस हो और बैक पेन हो, गर्दन में पेन हो, और फ्रोजन शोल्डर होता है, बैक में पेन होता है, बॉडी में वीकनेस होता है।
1: शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका,
0: स्वेलिंग वो सारा को सारा।
1: 437 इसके आ गया, 4383399। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4374383399 ते कॉल करो भाई। हेलो, लो जी अगली कॉल। हेलो,
2: हाँ जी, हरी जी, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल भाई जी,
2: हरिंदर संधू बोल रहे हैं जी।
1: हरिंदर जी, की हाल चाल है? ठीक हो?
2: ठीक है जी, ठीक है जी।
1: तुसी आना सी स्टूडियो, आज छुट्टी हो गई है?
2: हाँ, एक मैरिज से जाना पै गया जी, मैं मैडम उधर अमन उधर गए ने।
1: अच्छा अच्छा, चलो कोई गल। हरिंदर जी, अपने वालों मैसेज दियो सारयां नूं, और इस 7 तरीक नूं तुहाडे वास्ते जिहड़ा कि मेला कीर्तियां दा हो रिहा उहदे बारे जानकारी दियो।
2: हां जी, वाइल्डवुड पार्क दे विच हो रिहा जी, डेयरी ईस्ट ते 7 सितंबर नूं हो रिहा जी, मंडे नूं। गुरमेल सिंह जी सगू साहब हर तरह दे
1: जी जी,
2: ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ,
2: ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੇਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ
1: ਨੂੰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री और दस क्या चाहिए पाजी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
3: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
2: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जा tillobideo.com होर कोई सेवा
4: ओ रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca
7: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets si pal de vich Toronto to Delhi Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services di pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
8: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157
9: जे मैनु यार ना मिले ते मर जावा जे मैनु प्यार ना मिले ते मर जावा
10: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: रात आमे छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच।
0: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: लो जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो ता ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीयां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन। वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900।
3: सही
2: सुनिया बई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
4: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
5: इतनी बस नहीं, जेंट्स ले चांदी दे कड़े, चांदी दे चेन, चांदी दे ब्रेसलेट,
4: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
5: घोर एंड अवनेजर दे इंटरसेक्शन ते गुरुद्वारे बाय प्लाजा दे विच सिल्वर हट।
4: 647-339-3521
5: 647-339-3521 4525 अवनेजर रोड ब्रैम्पटन।
4: सिल्वर हट।
6: जी दोस्तों, तुसी जुड़ चुके हो अपने मनपसंद प्रोग्राम सारंग दे विच, मैं तुहाडा दोस्त अते होस्ट जगजीत माहल, राजवीर बोपाराए जी भी कुछ समय तक लाइव ऑन लोकेशन करन पहुंचे हुए ने कि साडे नाल जुड़ जाणगे। अज शुक्रवार दा दिन है, बड़ा ही खूबसूरत जिहा दिन हैगा, मौसम भी बड़ा अच्छा हैगा। असीं परमात्मा अगे अरदास करदे हां कि इह शुक्रवार दा दिन तुहाडे सारयां लई तंदरुस्तियां लै के आवे, खुशियां लै के आवे, इक चंगी सोच लै के आवे। इही असीं दिलों सारंग दे टीम वालों पूरी वालों दुआ करते हैं। दोस्तों, जिंदगी विच असी हर रोज़ किसी ना किसी दौड़ विच भज्जे रहिंदे हाँ। कोई कम्मां वल भज रहा है, कोई पैसे की दौड़ विच भज रहा है, कोई सुपने नूं पूरा करन की दौड़ विच भज रहा है। सो चंगा भी आ, भज्जना भी चाहिए गा, पर आपां कई बार ना जिहड़ी अपने आसे पासे कोई चीज़ां हुंदियां असी उन्हां नूं इगनोर कर दिंदे हाँ। हमेशा किसी की हैल्प कराया करो, जे कोई तुहानूं लोड़वंद दिसदा गा ते किसी की आपां पढ़ाई दे विच मदद कर सकदे हां, किसी नूं फाइनैंशियल तौर पर मदद कर सकदे हां। सो इदां दियां खुशियां भी लभदे रहा करो। सो अज असी बेशक गड्डी चला रहे हो तुसी, बेशक तुसी अपने घर दे विचों, तां अपने पालों सिर्फ एक गल जरूर कहना, जो कुछ मेरे कोल है मैं उस विच शुक्रगुजार हाँ, ते जो कुछ हासिल करना है उस लई मैं अज तो ही कोशिश करांगा। एक कोशिश ग्रैंड फर्नीचर ते भी हो रही है, अज दा शुक्रवार दा दिन है, जिहड़ा ग्रैंड फर्नीचर तो साडा लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम हो रहा है, उत्थे तुहाडा शुक्रवार इन्ना क ज़्यादा वधिया बनन वाला गा कि तुसी सोचा भी नहीं होना। मैं कोशिश करदा राजवीर जी नूं लाइन ते लैण दी, जे राजवीर जी पहुंच गए होणगे। राजवीर जी सत श्री अकाल, पहुंच चुके हो जी?
7: सत श्री अकाल भाई जी, सत श्री अकाल। आवाज़ ठीक पहुंच रही है
6: जी? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जी।
7: ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ
6: ਜੀ।
7: ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ।
6: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
7: ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸੁੱਖ ਜੀ
8: ਜੀ
7: ਜੀ ਐਨ ਵੈਲਕਮ।
8: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
7: ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਖੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਲਿਆ, ਸੋਫਾ ਲਿਆ
8: ਜੀ,
7: ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੀ ਕਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ
8: ਜੀ।
7: ਸੋ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਆ
8: ਜੀ,
7: ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਡੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 50-85 ਕਰੋੜ ਤੋਂ
8: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ।
3: ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਸੋਫੇ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਲੌਂਗ ਵੀਕਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਡੀਲ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਰੈਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, 6085 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, 6685 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ
7: ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਡੀਲ, ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ?
3: 6085 ਟੌਮਕਨ ਰੋਡ
7: ਆ ਜਿਓ ਬਾਜੀ, ਬਸ ਕਿਹਾ ਆ ਚੱਕੋ, ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਟ ਵੱਲ।

0: कागज की कश्ती वो बारिश का पानी,
1: ये कागज की कश्ती ये बारिश का पानी।
0: हाँ
1: ठीक है जी, मैं थोड़ा टाइम दो, मैं सुनानी है।
0: ठीक,
1: हाँ जी, थैंक यू सो मच थोड़ी कॉल दी। ते कश्तियां वाला ही वैसे तो मौसम होया होया सी, दो दिन पहले दा बहुत ज्यादा कह लो कि है ना, हर जगह ऊपर ही काफी डैमेज होया होया। मौसम ने कह लो इन्नी ज्यादा करवट बदली कि सारे पासे फ्लड ही फ्लड वाली सिचुएशन सीगी। ते एनीवेज साडी गल्लां बातें चलन गया, एक कॉलर होर ने 3631 जी, सत श्री अकाल
2: मनप्रीत जी। सत श्री अकाल अमरजीत जी, मैं बोल रहा हूं।
1: हां जी, सत श्री अकाल जी,
2: सब ठीक ठाक जी?
1: हां जी, बहुत वधिया, तुसी किवें हो?
2: सिद्धू साहब सुनदे उन्होंने, सत श्री अकाल।
1: हां जी, सिद्धू सर लाइव ते ने, नाल ही ने लाइन ते।
3: सत श्री अकाल जी, मैं सब की हाल चाल ने, ठीक हो?
2: हां ठीक है, ठीक है सिद्धू साहब।
1: हां जी, की सुनोगे अज?
2: मनप्रीत जी, गीत नाम है मजाजना।
1: हां जी,
2: ए फलक इजाज ते रिजी दा गाया जी।
1: फलक इजाज ते रिजी, ठीक है जी, मैं नोट कर लिया, मैं सुनानी है। तुहाडे वाली साइड मीं किन्ना पिया सी दो दिन पहला?
2: ओ कल बहुत पिया जी, कल थंडर स्टॉर्म सी, जिद्दां साडे भी पानी सड़कां ते खड़ गया, बहुत मीं पिया कल।
1: काफी इधर भी काफी डैमेज होया, बड़िया बड़िया सारी प्रॉपर्टीज काफी कुछ।
2: थोड़े टायरां पे मैं सुनया गड़े भी पए आ ते पानी भी 3-3 फुट भी सड़कां सड़कां तारां कारां कहिंदे तरदियां फरदियां सी।
1: हां जी हां जी, बिलकुल, इवन वेयर हाउसेस वगैरह दियां छत्तां उड गईआं, इन्ना इन्ना ज्यादा सीगा मुरब्बर हाल। ग्रैंड होम फर्नीचर दे उपर जिथे कि तजिंदर सिद्धू जी पहुंचे हुए ने, ते बहुत ही कमाल दे तुहानू डील्स दवा रहे हैं। सुख जी अज बहुत वधिया वधिया डील्स देने दे पूरे मूड दे विच हैगे ने, ते आपां चलदे हां एक बार फिर तो डेरी एंड टॉमकिन दे इंटरसेक्शन ते ग्रैंड होम फर्नीचर। जी सिद्धू सर,
3: रेडियो प्रोग्राम देश परदेश नाल जुड़े हुए हो, एक बार फिर तजिंदर सिंह सिद्धू वल्लों सारयां नूं जीआं नूं ते लॉन्ग वीकेंड दीआं सारे ही श्रोतियां नूं बहुत सारियां मुबारकां ढेर सारियां। अज असीं आगाज़ करता लेबर डे वीक हैगा और लेबर डे से तुहानू ढेर सारी असी बचत करा रहे हैं। ग्रैंड फर्नीचर 6685 टॉमकन रोड से, ते इथों दा नंबर है 6472622000।
1: जी,
3: ते जित्थों तक तुसीं आओगे तुहानू गिफ्ट दे के तोरांगे कोई ना कोई असी वधिया, ते जरूर इक चक्कर लगाओ 6685 टॉमकन रोड। अच्छा सुखों नी बड़ी जल्दी मेरे कोले सी हुणे ही, कहिंदे गीत सुनना, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗਰਲੇਜ ਆਖਰ ਦਾ ਮਿਰਜਾ ਲਗਾਵਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਿਰਜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ
1: ਮੈਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਸੁਣਦੇ ਆ।
3: ਉਹ ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
3: ਇਹ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁੱਤ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੁਖੋ ਰਹੂੰ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਖ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
4: ਮੈਂ ਸਚਿਨ।

0: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one get one free every day sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take out. मजा लवो संडे नु परांठा प्लेट, मंडे मनपसंद कुलचा प्लेट, ट्यूसडे चना भटूरा, वेंसडे लाजवाब वेज थाली, थर्सडे यमी हाका थाली, फ्राइडे मजा लवो साग मक्की दी रोटी दा। ए यमी डील्स सिंपली इंडियन दी सारिया ही लोकेशंस ते। डाइनिंग टेक आउट एंड केटरिंग आल्सो अवेलेबल। कॉल एट 905-794-8111। सिंपली डिलीशियस मतलब सिंपल।

0: हो गया, चलिए एक बार फिर तो लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम दे नाल जुड़िए। ग्रैंड होम फर्नीचर दे उपर 6685 टॉमकेन रोड दे उपर जरूर पहुंचो, डेरी एंड टॉमकेन दे इंटरसेक्शन ते, जिथे कि लेबर डे लॉन्ग वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम असी कर रहे हैं अज भी ते कल नु भी, 1 तो लेके 4 बजे तक लाइव ऑन लोकेशन प्रोग्राम दे नाल जुड़ांगे ग्रैंड होम फर्नीचर ते। जी सिद्धू सर,
1: मेहरबानी मनप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक बार फिर तुम सदा पत्र दे रहे हैं कि लेबर डे ते खास अभी पहुंचे हुए हैं चेचे तौर पर 6685 टॉमकन रोड से ग्रैंड फर्नीचर वाले तुम बहुत सारे गिफ्ट कार्ड भी दे रहे हैं, प्राइसा बड़िया ही रीजनेबल ने और वह भी तुम दवा रहे हैं कि तुम इस लॉन्ग वीकेंड के उत्ते इस सेल का फायदा उठाओ। तो पहुंचो रात के 8 बजे तक खुलने 6685 टॉमकन रोड, मेरे नाल ने सुखोरी जी।
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुख साहब। बिल्कुल असं अज 8 बजे तक ओपन हैं, लेबर डे लोंग वीकेंड की जी सेल अगे थोड़े लिए तैयार वर तैयार हाजिर हैं असं थोड़े लिए। सो परिवार जिथे भी कितने तुम प्रोग्राम में जुड़े हुए हो, फर्नीचर की बाइंग करनी चाहते हो तो लोएस्ट प्राइस के उपर फर्नीचर अपने घर लेके जाना चाहते हो, लेटैस लेटैस लेटैस्ट मॉडल जो तुम चाहिए आ पर प्राइजा लोएस्ट चाहिए तो व्डे व्डे तोहफे अपने घर लेके जाना चाहते हो तो जरूर एक चक्कर लाओ लेबर डे लोंग वीकेंड के उपर 6685 टॉमकन रोड के उपर 6685 टॉमकन रोड को याद रखना। तो साहब एक डील दें, न्यू अराइवल नवे कंटेनर आया लेबर डे लोंग वीकेंड उपर, कड़ाके कंध भी प्राइज देनी है। पहला फीचर सुन लेने परिवार, लैदर का रिकलाइनर सोफा सैट, ब्राउन कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, दो कलर भी अवेलेबल ने,
1: लैदर का रिकलाइनर सोफा सैट
2: जी। सिंह साहब ये फीचर है कि पैर वाला पास फुटरेस्ट भी पाव रहा, पिछले से ढो लाके बह जाना, हैडरेस्ट भी पाव रहा, वो भी देख रहे हो, फुटरेस्ट भी पाव रहा, हैडरेस्ट भी पाव रहा, थले एलईडी लाइटा लगिया हुई, साइडा के कप होल्डर बने हैं, तुम्हें ड्रिंक रखनी चाह का कप रखना, आर्मा के स्टोरेज है, साइडा के फोन चार्जर भी आ, फोन भी चार्ज हो जाना, ता कप होल्डर भी आर्मा च भी स्टोरेज है, थले एलईडी लाइट आ, पावर रिकलाइनर आ, पावर हैडरेस्ट प्लस स्टोरेज भी आ। सो फुली लोडेड पावर रिकलाइनर सोफा सैट, पावर हैडरेस्ट के नाल एलईडी लाइटा, वायरलैस चार्जर, यूएसबी चार्जर, सोफा एंड लफ्टड फुली लोडेड, जी रेगुलर कीमत 3589 ओनली फॉर दिस वीकेंड लेबर डे लॉन्ग वीकेंड के उपर, पूरा सोफा सैट, सोफा एंड लफ्टड पावर रिकलाइनर, बिजली वाला पावर रिकलाइनर सिर्फ 1899 का 1899 दे विच लेटेस्ट मॉडल से अपने घर लेके जाना। इतने ही बस नहीं होनी, जो तुम
1: आप गिफ्ट देवे बढ़िया नाल
2: सिद्धू साहब,
1: अच्छा जो तुम 1899 क्या है टीवी से होना चंगा लगता।
2: ऑप्शन दो दिन जिन्होंने टेलीविजन लेना टेलीविजन लेना, जिन्होंने रियल मार्बल का डाइनिंग टेबल 6 चेयर लेनी है वो लेना, दोनों ऑप्शन। सो 1899 का पावर रिकलाइनर सोफा सेट फ्री लोडेड 1899 का, तुम रियल मार्बल का टेबल
1: 6 चेयर डाइनिंग टेबल मिल जाएगा,
2: वो भी मिल जाएगा, वो लेना वो ले लो, टीवी लेना टीवी लो, दोनों चार चीजें जी जिन्हें जो मर्जी एक तुम ऑप्शन ले सकते हो। सो डाइनिंग टेबल 6 चेयर रियल मार्बल का फ्री, जे नहीं लेना तो टेलीविजन टीवी फ्री, तो यह जी डील है तो यह तोहफे ने लेबर डे लॉन्ग वीकेंड सेल के उपर। सो जरूर एक चक्कर लाओ 6685 टॉमकन रोड के उपर, 6685 टॉमकन रोड, डेरी टॉमकन की मेन इंटरसैक्शन हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर, 6685 टॉमकन रोड। सिद्धू साहब
1: मेहरबानी, सुख अगे जाके आप बड़ी वधिया जी एक मनप्रीत होर डील लवांगे, सुख करा तो बड़ी अच्छी। जिन स्रोत सुन रहे हैं कहोंगा कि जेकर तुम इस समय, क्योंकि अज लॉन्ग वीकेंड रश भी होंगे, हौली हौली आ जाओ, रात के 8 बजे तक खुले ने 8 o'clock तक ओपन है, जिन्हें भी लोग 8 o'clock तक आएंगे उन्होंने ये सर्व करेंगे, ये सारा इन्हों का स्टाफ भी अवेलेबल है इतने, तो तुम दिखा रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी डील लगिया हुई ने। पहुंचो रात के 8 बजे तक ग्रैंड फर्नीचर 6685 टॉमकन रोड।
0: जी बिल्कुल, ग्रैंड होम फर्नीचर का नंबर भी तुसी नोट कर लो, कोई भी तुसी जानकारी लेनी है किसी भी डील दे बारे तो नंबर है 6472620000, 6472620000 ग्रैंड होम फर्नीचर ते तुसी जरूर पहुंचो, डेरी एंड टॉमकेन दी इंटरसेक्शन ते। अगला फरमाइशी गाना बड़ा कमाल दा, लता मंगेशकर एंड नाल ने किशोर कुमार, उन्होंने आवाज दे विच तुसी इंजॉय करो, सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

इसे दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। इस गीत नाल टुकदा शेर है बड़ा खूबसूरत, किसे सज्जन ने भेजा, कहिंदा किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बगैर दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं।